0: ये यंग जी तो ला जेन ताऊ तो चिला शोपुत ले कम सा
1: नो कम सा
0: ओ
1: नो निम तुम तो ला तेरी सेबा कने क्यों पी बाला
0: पास तांजे ने क्यों यू जेन यंग जी तो ला
1: लिसे नो नो निम तुम तो ला अगर यूसिंग अंजू यंग पुनी लिसे ना शो ना जे इना चुचु शिबे पामे लाप जे शिबे सोंग से डिस्ट्रॉय पी जू ना
0: लो अंजू पामे लाप जे शिबे ती अंजू केरे यंग जेवला रे तांबे लुशे ती हाचांग के निम बुयो रे एंग के ཁེ ཡང ཅི ཚོ ལ དང ཁེ དའོ དེ ཤི ལ ཁེ ན ཉི ལ དེ ཤི ཅེ དེ དེ ན ཅེ མ སོ ཁེ ན ཉི ལུ ལུ ཤི དེ ཐུ ལུ ལུ ང ནེ སེ ར ན
1: ཚོ ཅེ ན
0: ང ཅེ དུ ཡུ ཁམ སུ མེ མ དེ ཁོ ཅེ མེ མ ན པོ ཅེ ཁེ ཁེ བ ལ ལུ ཤི དར ར ཨ ནི ཁེ ལ ཡི ན རེ ཁེམ ཁེ ཁེམ ད ཡི ན རེ ལོ ཚོ ཁེ བ དེ ཁ ལ ཉེ ཅེ ཨ ནི ཡག དོ ཡག དོ ཡོན དེ དེ ཤི མི དུ ཤུ གི ཁེ ལ
1: ཉེ སེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ᱟ ᱥᱤᱝ ᱵᱮᱥᱤ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱞᱴᱚ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱭᱟ ᱭᱮᱡᱤᱛᱟ ᱠᱟᱥᱟᱛ ᱛᱮᱨᱟᱛ ᱛᱤᱛᱚ ᱵᱩᱭᱩᱢ ᱵᱟᱛᱟᱢᱟ ᱟᱱᱛᱟᱨᱚ ᱨᱚᱝᱟᱱᱮ ᱠᱟᱪᱟᱱᱟᱨᱮ ᱢᱮᱨᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱤᱝᱜᱟᱱ ᱛᱟᱢ ᱵᱤᱧᱡᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱚᱢ ᱡᱩᱭᱩᱢ ᱵᱮ ᱛᱟᱥᱤ ᱢᱤᱱᱫᱩ ᱥᱩ ᱢᱟᱥᱮ ᱮᱠᱮᱞᱟᱨ ᱥᱤᱡᱚ ᱧᱮᱢ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱢᱮ ᱥᱩᱥᱩ ᱯᱟᱭᱩ ᱤᱱᱟᱨᱮ ᱢᱤ ᱯᱟᱭᱩ ᱤᱱᱟᱨᱮ ᱡᱤᱡᱤᱛᱚ ᱱᱮ ᱭᱩᱴᱩᱢ ᱜᱮᱪᱮ ᱥᱚᱜᱮ ᱯᱟᱝᱫᱟ ᱨᱤᱝᱩ ᱥᱤᱥᱤ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱠᱤᱪᱷᱚ ᱫᱟ ᱠᱚᱴᱚ ᱠᱚᱴᱚ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱪᱤᱠᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱨᱚᱥᱮ ᱟᱭ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱮᱣᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱵᱩ ᱡᱤ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱛᱮᱵᱩ ᱡᱩᱱᱟ ᱟᱱ ᱛᱤᱠᱟᱥᱚᱨᱮ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱭᱟ ᱤᱥᱟᱢ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱟ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱪᱮᱱᱮ ᱞᱤᱞ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱩᱢᱟᱨ ᱵᱟ ᱠᱮ ᱭᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱷᱚᱞᱟ
1: ᱥᱤᱡᱟᱱ ᱞᱚ
0: ᱟ ᱠᱩᱪᱤ ᱠᱩᱪᱤ ᱢᱤᱢᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱮ ᱛᱚ ᱜᱩᱱ ᱛᱚ ᱵᱮᱱ ᱫᱮ ᱡᱮ ᱪᱤᱞᱮ ᱜᱮ ᱧᱤ ᱞᱟ ᱱᱟ ᱟ ᱞᱮᱢᱵᱚ ᱢᱤᱱᱫᱩ ᱜᱮ ᱞᱟ
1: ᱞᱚ ᱞᱚ ᱱᱤ ᱥᱮ
0: ᱞᱚ ᱟᱱᱟ ᱞᱩᱯᱨᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱩ ᱫᱚᱵᱟ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱤᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱨᱮ ᱱᱮ ᱞᱮ ᱛᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱛᱮᱱᱡᱟᱞ ᱤᱥᱟᱢ ᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱛᱤ ᱞᱤ ᱚᱝᱜᱚ ᱛᱤ ᱞᱩᱴᱩ ᱭᱩᱢᱵᱮ ᱛᱤᱥᱤ ᱢᱤᱱᱫᱩ ᱥᱩ ᱢᱟᱥᱮ ᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱫᱩ ᱞᱩᱝᱫᱤ ᱱᱟ ᱥᱩ ᱜᱮ ᱴᱚᱠᱚ ᱥᱮᱱᱤ ᱭᱚ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱴᱚᱠᱚ ᱥᱮᱱᱤ ᱭᱚ ᱚᱝᱜᱚ ᱪᱤᱱᱡᱮ ᱭᱚ ᱟᱢᱤ ᱢᱟ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱩ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱯᱤᱵᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱠᱮᱱᱟ ᱧᱤ ᱛᱮᱨᱤ ᱞᱮ ᱡᱮ ᱞᱤ ᱴᱩᱵ ᱫᱟ ᱟᱠᱩᱥᱩᱞ ᱛᱩ ᱪᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱟᱞᱮ ᱥᱩ ᱟᱣ
1: ᱱᱤᱥᱮ ᱱᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱟᱣᱟ ᱱᱤᱢ ᱛᱩᱱᱫᱩᱞᱟ
0: ᱞᱚ ᱞᱚ